तीर कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार ना कछ मिलियो ले लंगोटी तो सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जागन जे रसना नाम उचारने असंख हजूर कहंदे ने असंखा ही मोह माया दी नींदर विच सुते हुए हन अपने तंदियां विच सारा जीवन रोल दिता है पर कदी सुते हुए मन नूं जगाउण दा जतन नहीं कीता कि तू की करन आया वाहिगुरु ने तैनूं किस मार्ग ते तुरन लई कहा सी ते तू किस मार्ग ते तुर पिया है प्रिया प्रेम सहज मन अनद धरोरी प्रभ मिलबे की लालसा तांते आलस कहां करोरी जिन्हां नूं प्रभु दे मिलन दी लालसा होवे ओ फिर कदे आलस करदे हन ओ अमृत वेला सौंके बिता देंदे हन नहीं ओ कदे नहीं अमृत वेला सौंके बिताउंदे ओ फिर जाग के मालक दे चरणां विच जुड़ के आनंद माणदे हन रस माणदे हन ते जिन्हां ने भाई ए मनुच्छा जन्म मोह माया दी नींदर विच सौंके ही बिता दिता है पहलां बचपन सी खेडां विच बीत गया जवानी घर दे सामान इकट्ठे करन विच बीत गई

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाव करूं, जे बिद मन को संसा चूकै पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यो कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

तरन लग्या है। गुरु दी महिमा कर रहा है, अपनी सुरत द्वारा सतगुरु दे दर्शन करो।

इस महिमा विच मन बिरते एकाग्र कर सुरत द्वारा सतगुरु दे चरणा ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

अंदर बोल दी, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज। वो आवाज जेड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर वध गई, अंदरों पावर वध गई, अंदरों गूंज प्रतीत करो सिमरन दी।

होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गए, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ। हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जिहड़ियां बाहर नहीं दिसदियां, अंदर उन्हां नाड़ां विच

जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास।

0: जन्म अमोलक पायो।
1: दुर्लभ जन्म
0: चिरंकाल पायो,
1: दुर्लभ
0: जन्म चिरंकाल पायो। जात्यो कौजी बदला काथूरी को गाहक आयो,
1: लाद्यो
0: कल बिरख जिहा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई। मोहन ठगौरी क्यों पुरज पहा, मोहन ठगौरी क्यों

0: जित्ता जित के कायम सिख राज कीता, चंडा केसरी लाहौर चुला दिता। जी दी बात ने बेअफगान पौदे नौ जग दे विच चमका।
1: गुजरा वाले दी धरती 1791 दा पागा परिया दिन
2: सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता तरन कौर दी कुखों जन्मिया सरदार हरी सिंह ननुआ।
1: 7 साल दी उम्र विच ही पिता दा साया सिरो उठ गया। नानकियां दी निगरानी विच हरी सिंह ने शस्त्र विद्या ते कोल सवारी विच निपुणता हासिल कीती। कुछ सालां विच ही चंगा योद्धा बन गया।
2: शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने एक दिन हरी सिंह नलुए दी वीरता दे करतब देखे ता अपनी फौज विच भर्ती कर लिया।
1: दिना विच ही तरक्की कर हरी सिंह शेर दिल रेजिमेंट दा सरदार बन गया। शेरे पंजाब दे जरनैल खालसा राज दे थम जरनैल हरी सिंह नलुए दिया गल्ला कर इंज होण लगिया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महासिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरि सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरि सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालो सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरि सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एओ टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तोला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ होते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़ ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया है भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है

आरती। सतगुरु जी कह रहे हैं कृपान खंडा खड़ग तुपक कहंदे ने बंदूक नो तबर अर तीर ए जड़े शस्त्र ने कृपान खंडा खड़ग बंदूक तीर सैफ सरोही सैथी सैथी कहंदे ने बरशी नू।

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तू फंगा नु भी पीर के साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है सैती भी तू ही है तू ही तबर है तू ही तलवार है के तू ही तीर है तू ही बरछी है तू ही तबर है तू ही

इन्हों पहाड़ी राजियां ने मुगलां दे नाल मिल के हमला किया। पहाड़ी राजियां ने जंग का ऐलान कर दिता। रंगड़ा गुजरां नूं भी अपनी फौज